शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: Yeah, this is Grip on the beat.

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: CJMR 1320.
1: लावल भूख
2: जाओ। आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते।
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार। आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320। CJMR 1320।

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: कैलेडन सब्जी फार्म जिथो तुसी खरीद सकते हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां हरियां मिर्चा घिया मटर कद्दू लौकी शलगम टमाटर शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा सरों दा साग गंदलां वाला बनाया बनाया लेना विद मक्की दी रोटी जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकते हो। इस तो अलावा स्टील सरवलो पित्तल तांबा मिट्टी हर साइज दे बर्तन फोल्डिंग बैड नवारी पलंग मूड़े साइकिल तंदूर आदि खरीदने वास्ते पहुंचो 1250 एयरपोर्ट रोड इन कैलेडन एयरपोर्ट एंड मेफिल और कॉल 9058409000। ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैलेडन सब्जी फार्म।
2: वाह गिल साहब ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी उपरो एनी सारी एनर्जी ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है।
3: ओ यार काव्य होमो केयर होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
4: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे कॉल करो
5: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन।
6: घर होवे या ऑफिस ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलेडन पेविंग।
7: एक्सेस रैंप्स एक्सकावेशन ग्रेडिंग रीसर्फेसिंग ओवरले फार्म ड्राइववे पेविंग ये सब कर देने आज ही कांटेक्ट करो जस बालू इट्स 416-818-8900
6: और विजिट www.kalidanpaving.com।
1: ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੈਕਸਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸੀ 6475481888 6475481888 लोटस फ्यूनल होम।
8: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक, चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 और 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: नवरात्रि स्पेशल अनोखा अंदाज दी स्पेशल सेल लगन जा रही है। लेडीज मेंस पार्टी वेयर, ब्राइडल लहंगास, सूट्स, साड़ीज, कुर्तीज, अनस्टिच्ड सूट मटेरियल लेना होवे तो आज ही आओ। सूट्स से ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकते हो। नवरात्रि स्पेशल घाघरा चोली जस्ट $50। मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मेंशन CJMR एंड गेट 20% ऑफ ऑन एवरी ड्रेस। अनोखा अंदाज 6101 मेफील्ड रोड, यूनिट 3, ब्रांच।
4: टाटा आटो इलेक्ट्रिक इत्थे हर तरह दी कार, वैन, ट्रक अते SUV दे स्टार्टर, अल्टरनेटर अते जनरेटर तुसी रीबिल्ड करवा सकदे हो। टाटा आटो इलेक्ट्रिक स्टार्टर, अल्टरनेटर, जनरेटर रीबिल्ड करन दा चैंपियन। मिलो घर शंकर वाले वीर सरदार सतनाम सिंह अते अमरीक सिंह, 38 एडिस्टोन एवेन्यू इन नॉर्थ यॉर्क। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-740-5555, 416-740-5555। टाटा आटो इलेक्ट्रिक।
5: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM सुप्रीम डेल डेंटल सेंटर दे नाल।
6: वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, विजडम टूथ, रूट कनाल, डेंचर
7: फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, गम ट्रीटमेंट एंड इम्प्लांट।
5: SM सुप्रीम डेल डेंटल सेंटर 2260 बोवेट ड्राइव ईस्ट, ब्रैम्पटन। बोवेट जिंगोसी डेंटल सेंटर 811 बोवेट ड्राइव, यूनिट 17, ब्रैम्पटन। कॉल 9057898266।
8: आओ फिर तुहानू अजिहे सुपर स्टार नाल मिलाउंदे आ जो कि होम लाइफ सुपर स्टार दे नाल काम करदे ने एज अ ब्रोकर टीम मनजीत दे मनजीत सिंह। घर खरीदना, बेचना, लिस्ट करना चाहुंदे हो तां भाउ दा सिक्का चलदा है। कम्युनिटी तो लंबे अरसे तो सेवा करदे आ रहे मनजीत सिंह। फोन नंबर 416-716-7653, 416-716-7653, या विजिट करो उन्हां दी वेबसाइट www.teammanjeet.ca।
9: The 2026 Brampton Municipal Election is on Monday, October 26th. If you can't vote on voting day, you can vote early during advance polling. Advance polling will take place on October 9, 10, 11, 18 and 17. Voting hours are weekdays from noon to 8 p.m. and weekdays from 10 a.m. to 5 p.m. You can vote at any advance voting location in Brampton. Bring your voter notice if you received one and identification showing your name and address. Address to vote. Didn't receive a voter notice? Bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. For voting locations, voter information and a list of candidates, visit brampton.ca/brampton votes. A message from the city of Brampton.
10: Grids furniture da message zara dhyan na suno.

0: Network Toronto.
1: बाबा जी मेरा ब्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र था फूको बच्चे थे
2: 647-888-6000।
1: बाबा जी आकड़ा मंत्र है
2: बच्चा, ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो ब्याह दी तैयारी है।
1: पक्की गल बाबा जी,
2: बाबे दा घर भी एना ने ही बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
0: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते ले परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 647-888-6000 और विजिट NRIMB.com।
3: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 और 10।
4: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
5: आओ फिर तुहानू अजिहे सुपरस्टार नाल मिलाउंदे आ जो कि होम लाइफ सुपरस्टार दे नाल काम करदे ने एज अ ब्रोकर टीम मनजीत दे मनजीत सिंह। घर खरीदना बेचना लिस्ट करना चाहते हो तब पाओ दा सिक्का चलदा है। कम्युनिटी तो लंबे अरसे तो सेवा करदे आ रहे मनजीत सिंह। फोन नंबर 416-716-7653 या विजिट करो उन्हां दी वेबसाइट www.teammanjeet.ca।
6: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रही ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 और 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
4: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
7: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ, अपनियां नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ। लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ, ताजियां स्वादलियां मिठाइयां अते जायकेदार फूड ले हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स, जित्थों तुसी डाइन इन या टेक आउट भी ले सकते हो। ग्रेट फूड, बेस्ट सर्विस ले लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो 499 री लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन। कॉल 905-450-9054-506-464।
8: लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट, लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
9: विश्वास प्रतीक ना रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवा वादा काम हो गया जे सौखा। मारो एक आवाज अजेहे कमा वास्ते। रियल एस्टेट क्लोजिंग, नोटराइजेशन, एफिडेविट्स, डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स, पावर ऑफ अटर्नीज, बच्चा लाई कंसेंट लेटर्स। बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700। अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस, ठीक सलाह बल्ले बल्ले।
10: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
11: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कनेडियन मेड इंपोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर।
10: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
12: अगर तुहाडे बेसमेंट दे विच पानी दी लीकेज हो रही है, तुसी उस तो छुटकारा पाउणा चाहुंदे हो, तां इक्को इक नाम नूं याद रखना। पिछले 25 सालां तो कम्युनिटी दे विच मन्निया परमन्निया नाम बेस्ट रेनोवेशन दे सतविंदर सिंह। 416-451-4565। 25 साल दी दिंदे ने नाल वारंटी। 416-451-4565 ते कॉल करो ते हमेशा हमेशा लई पानी दी लीकेज तो पाओ छुटकारा।
13: रिट्स फर्नीचर दा ए मैसेज जरा ध्यान नाल सुनो। सस्ता

0: ट्वीट रोहित दयासमैन एट रिट्स फर्नीचर प्लेनेट 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा टेलीफोन 9052322 रिट्स दैट इज 2327489 विजिट रिट्स फर्नीचर प्लेनेट .ca
1: सस्ता सामान सस्ता नहीं हाई एंड सस्ता
2: लंबे समय तो कम्युनिटी विच परख्या होया नाम एनी टाइम होम रेनोवेशन सिटी तो बकायदा परमिट लेके तुसी अपने घर दी लीगल बेसमेंट तैयार करोनी है या वाशरूम प्लम्बिंग किसी भी तरह दी रेनोवेशन दे कमां नूं समय ते करवाउणी चेते रखो एनी टाइम होम रेनोवेशन वधेरे जानकारी लई कॉल करो 6472717135 6472711735 एनी टाइम होम रेनोवेशन
3: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: house, baby.
1: ले ले घर गाड़ी चाहे दौलत, करने दे प्यार मुझे थोड़ी मोहलत, मेरा है ये सपना, बना लो तुझे अपना, बेबी चाहे ले ले मेरी सारी शोहरत।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

आऊंगा तेरे रूबरू एक दिन, तेरे ही किसी अजीज की सिफारिश लेकर। मेरी तो तू नहीं सुनेगा मुझे पता है, वही आएंगे मेरे साथ मेरी गुजारिश लेकर।

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: आ कौन आ बिना गल्लो नहीं अखा जी चाड़ी फिर दे

में मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता नहीं।

Your voice, your radio star. आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320. CJMR 1320.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: तन ते पाया कपड़ा जो भी पाड़ पाड़ के लाउना ओए मनाना कर मन आईया एक दिन पैना ही पछताउना।
1: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
2: Tusi sun rahe ho Chawla News Network Toronto.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: हाय, मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे। मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
2: क्यों नहीं चन करे, कहे ता सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दे।
1: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल। उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने। सेट रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
2: हां, नाले मैं साड़ी दियां बाहां भी तां मंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां उनू भी ले दांगे।
1: तो मेरे जीजे ली घड़ी?
2: आहो, अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
1: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 7198 पेट्रोल मालटन इन अशोक प्लाजा। फोन नंबर है 9056714290।
3: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
4: ओ यार काव्या, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
5: जेकर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
6: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन।
7: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। कॉल 905-928-8557 अनाज मार्ट।
8: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
9: HK Movers,
8: local and long distance,
10: we also ship cars,
8: Kailer transport and moving services.
9: For service with a smile, give us a call.
8: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
9: 416-524-6704.
8: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
10: Long distance moving specialist,
8: HK Movers.
11: ਮੈਂ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ 9 ਐਂਡ 10 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ। ਅਕਤੂਬਰ 10, 11, 16, 17 ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਫਾਰ ਮੋਰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ.com। ਕੈਂਪੇਨ।

0: में केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca। लव साउथ।
1: अगर थोड़े बेसमेंट दे विच पानी दी लीकेज हो रही है, तुसी उस तो छुटकारा पाना चाहते हो, तो इको एक नाम नु याद रखना। पिछले 25 सालों तो कम्युनिटी दे विच मन्या पर मन्या नाम बेस्ट रेनोवेशन दे सतविंदर सिंह। 416-451-4565। 25 साल दी दिन देने नाल वारंटी। 416-451-4565 ते कॉल करो ते हमेशा हमेशा ली पानी दी लीकेज तो पाओ छुटकारा।
2: वाह भाभी जी, मुबारक, तुहाडा घर ते बहुत शानदार है। कारपेट्स, वुडन, सब कमाल दे ने, लगदा है काफी खर्चा कीता है।
3: ए कमाल है जी, GTA फ्लोरिंग दा अफोर्डेबल प्राइस ते क्वालिटी दा समान। वड्डे शोरूम ते आओ, हार्डवुड कारपेट, लैमिनेट, टाइल्स दी खूबसूरत लार्ज वैरायटी पाओ। कॉल करो नव बराड़ नू 905-605-4005 905-605-6605।
4: GTA फ्लोरिंग कैनेडा।
5: GTA फ्लोरिंग कैनेडा।
6: मेरी हाथ मिनोनो चूड़िया है,
7: आज ते जान नालो ज्यादा तू सोनी लग रही है।
4: तुसी भी आओ, अपनी खूबसूरती नु सजाओ स्कारप्रो टेक्सटाइल नाल।
7: पाओ सूट्स, साड़ीज, लहंगास, ज्वेलरी अते फैशन एक्सेसरीज,
4: ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड मच मच मोर।
7: आज ही पहुँचो
4: स्कारप्रो टेक्सटाइल, 2659 एजलिंगटन एवेन्यू एट एलबियन। कॉल 416-742-0010 416-742-0010।
8: कोई मांगे मीठा, कोई कहे नमकीन, एक बात तो पक्की है, ये सब है इसके शौकी।
9: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
10: के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयां ऐसी कि मजा आ जाए।
8: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
10: Multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
11: कैलेडन सब्जी फार्म, जिथो तुसी खरीद सकते हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां, हरियां मिर्चा, किया, मटर, कद्दू, लौकी, शलगम, टमाटर, शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा। सरों दा साग, गंदला वाला बनाया बनाया लेना विद मक्की दी रोटी, जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकते हो। इस तो अलावा स्टील, सरवलो, पित्तल, तांबा, मिट्टी, हर साइज दे बर्तन, फोल्डिंग बैड, नवारी पलंग, मूड़े, साइकिल, तंदूर आदि खरीदन वास्ते पहुंचो 1250 एयरपोर्ट रोड इन कैलेडन, एयरपोर्ट एंड मेफील्ड, और कॉल 9058409000। ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैलेडन सब्जी फार्म।
12: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तोहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 905-928-8557।
11: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। येकर तो हड़ा कार, वैन, ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तो हड़ा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकते, सारे खर्चे ज्यों दे त्यों बरकरार हन, उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आनाकानी कर रही हन, तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए, चीचियां ना वटो, बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह दे एक्सीडेंट सूरत विच तो हड़े हकां दा रखवाला। मानसिक पीड़ा दे नाल शरीरिक दर्दां दी मलम, डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स। फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला 1800567HURT 4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010 416-557-5010। डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल